0: ভাইরাস গোর্খা রেডিও, গোর্খা রেডিও। কোলোরেক্টাল ক্যান্সার ভন্নুভয় তপাইলে হইন, ইউ চাই বিশেষ গরের
1: হাম্রো চাই ঠুলো আন্দ্রা র সানো আন্দ্রা ভন্নে হুন্ছ, ঠুলো আন্দ্রামা চাই হো।
0: যে শ্রোতাহরু পেট দুখেরে চাই জানু ভাথে হলা হইন ডাক্তার কোমা?
1: পেট দুখেরে ভন্দা পনি ম্যাম কি ভগো থে ভনে আব দিশামা চাই আব ব্লড হরে দেখিনে টাইম টাইম মা চেকআপ হরে পনি ডিফারেন্ট হসপিটাল হরে মা তা গরাইরাইকো, নরমাল হসপিটাল হরে মা আব ওয়াহরিলে চাই আব তেই তা হো আব ইনস্ট্রুমেন্ট হরে নভাই পছাড়ি তেই হো পায়েস ভনের ও গর্নু ভয় কে পায়েস ভনের সাসপেক্ট গর্নুভয়। নর্মাল হসপিটালহরুমা যাদাখেরি যা যা মেসিনহরু নভাগো ঠাউমা, কিনভনে হাম্রো চাই এস্তো ছ কি ম্যাম, হাম্রো এতা গাইঘাট উদয়পুর ভন্ন বিত্তিকই হাজুরকো অলিকতি অবিকশিতই ঠাউ হো, এতা চাই হসপিটালহরু ভয়, অলিকতি হসপিটালহরু ছৈন। হসপিটাল ছ তর কস্তো ছ ভনে জ্বর খোকিহরুকো লাগি চাই ঠিক হুন্ছ, তর নর্মালি আব সিরিয়াস কেসহরু জস্তো কি ইন্ডোস্কোপি গর্নে মেসিন ছৈন, কোলোনোস্কোপি গর্নে মেসিনহরু ছৈন। अनि त्यो भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ यता अब मलाई त यता सजिलो भयो हस्पिटल, र मैले सुरुमा अब नर्मल मलाई त्यस्तो देखा परेछ, मैले हाम्रो उदयपुरमा गएँ हस्पिटल, अनि त्यहाँ त अब डक्टरहरूले यो सस्पेक्ट गर्नुभयो कि अब यत्रो 21 वर्षको मान्छेलाई क्यान्सर हो भनेर त कसैले पनि प्राय सुरुमै उ गरिहाल्नु हुँदैन रहेछ कि, सस्पेक्ट गर्नु हुँदैन रहेछ, अब नर्मली पायोस् हो भनेर भन्नुभयो मलाई पनि। अनि मैले पनि अब त्यही त सोचेँ, अब यत्रो ठुलो रोग त कसैले पनि सोचिँदैन आफूलाई भएको छ भनेर, नसोचेकै कुरै लाइफमा चाहिँ अनप्रिडिक्टेड हुँदो रहेछ कि, पुरै त्यस्तो भइदिने। अनि त्यहाँदेखिको यताबाट पनि मैले धेरै उपचारहरू, धेरै हस्पिटलहरू गएँ नर्मल हस्पिटलहरूमा, उहाँहरूले चाहिँ पायोस् भनेर सस्पेक्ट गरेर दबाईहरू दिने, घर पठाइदिने गर्नुभयो। अनि म घर आएँ, अनि त्यस पछाडि पछिबाट चाहिँ मलाई चाहिँ कति ब्लड त त्यस्तो त नर्मली भइरहेको थियो, 3-4 वर्षै भइसकेछ अलिअलि ब्लड आउने, तर रेगुलर होइन, 5 महिनामा एकचोटि, 3 महिनामा एकचोटि त्यसरी हुन्थ्यो। दिशामा जस्तै कि दिशामा चाहिँ फ्रेस खालको ब्लडै आउँथ्यो, तर धेरै होइन, थोरै आउँथ्यो। पेन पनि नहुने, पेटमा पनि दुख्नु पोल्नु केही नहुने, नर्मली त्यही ब्लड मात्रै आएको सङ्खाले चाहिँ आफूलाई के भयो भनेर एउटा जिज्ञासा हुन्छ नि मनमा डर, त्यसको लागि मात्रै म चाहिँ नर्मल हस्पिटलहरूमा जान्थेँ। अनि उहाँहरूले अब पायोस् भनेर पठाइदिनुहुन्थ्यो दबाई दिएर, अनि पछि त्यस्तो त्यस्तै हुँदै गएपछि पछि एकचोटि चाहिँ मलाई साह्रै पाऱ्यो, के कसरी साह्रो पाऱ्यो भन्दाखेरि अलिक कन्स्टिपेसन भयो, अनि कन्स्टिपेसन भए पछाडि चाहिँ म गएको ठुलो हस्पिटलमा, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँबाट चाहिँ कोलोनोस्कोपी थ्रु चाहिँ अब डक्टरहरूले पत्ता लगाउनु भएको हो म्याम।
0: हजुर हजुर, कुन हस्पिटलमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो तपाईँले?
1: मेरो चाहिँ मैले चाहिँ प्राइभेटमै गरेको हो, किनभने अब मेरो केस त कस्तो थियो भने त्यही त हो, अब 7 मन्थ जति नै भइसकेको थियो हार्ड कन्स्टिपेसन भएको, मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै क्रिटिकल सिचुएसन थियो। अनि जुन सिचुएसनमा चाहिँ अब त्यही त हो, सरकारी हस्पिटलमा गयो भने अलिकति ढिलो हुने प्रोसेस होइन, अनि हामी सुरुमा त सरकारीमा गयौँ, सरकारीमा पनि गएको थियौँ, तर त्यहाँ चाहिँ अब त्यही हो, त्यतिखेर के समथिङ बन्द थियो, 1 हप्ता कि 14 दिन कति दिनको लागि बन्द हुने भन्नुभयो, अनि त्यति बेरसम्म पनि मेरो चाहिँ स्थिति